श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं जोगुजाती कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM पर या तो www.diversefm.com पर। गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवार आपने समक्ष रजूआत करने पर कोशिश करे छे रात ना 8-10 कलाके 102.8 FM पर या तो www.diversefm.com पर। स्टूडियो नो व्हाट्सएप नंबर छे 0756868686 3। फरमाइशो पछी धीरे धीरे आवती जाए छे। आ छे यशजी आपनी बीजी फरमाइश।

श्रोता मित्रों, आप सम्रिया चो गुजराती कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM ऊपर या तो www.diversefm.com ऊपर गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवारे आपने समाचार जो याद कराने पर पूरी कोशिश करिए चाहे रात ना 8-10 कलाके 102.8 FM ऊपर या तो www.diversefm.com ऊपर कया देश पासे सू नथी, कया देश पासे सू नथी, आपने पास जवाब हो तो चौकस हमने व्हाट्सएप करो 0756868686863। मने आशा है कि तुमने गीत खूब ज गमो से। अभी ज रीते आ गीत एटलू दूर दूर थी बधे चारे कोर थी आवता हुए अने धन्यवाद। अभी ज रीते आपनी फरमाइशो मोकलता रहे तो आपने बधाई जोड़े भेगा पड़ी ने आनंद माणिए। आप सांभ रिया छो गीत माला

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं चौगुजराती कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM पर या तो www.diversefm.com पर। गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवारे अपनी समझ रजूआत करने पूरी कोशिश करिए छे। रात ना 8-10 कलाके समय पन जातो जाए छे, हम भगाए भागे छे एम कहे ने घड़ियाळ कोहे पाछळ बहु ओछी जाती होय छे। हा, गईकालनी वात पूरी थई गई, आजनी वात करो ने कालनो विचारो। आप सांभळ्या छो गीतमाला 102.8 FM ઉપર યા તો www.diversefm.com ઉપર। સમય થોડો છે અને ગાડી પણ આવી ગઈ છે।

श्रोता मित्रों, आप सामरिया तक जाते कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM पर या तो www.divosfm.com पर। धन्यवाद आपनो साथ अने सहकार माटे अने संदेशा माटे अनेक जुदा जुदा बधाय जात जातना वात वातना एम कहेवाय ने हसवानी वात छे, खूब ज आनंद करवानी। आवी ज रीते आवता गुरुवारे फरी पाछा आपनी सेवामां जथाई जासो। शुभरात्रि कोहरी आवजो, बाय बाय। हूँ आपनो सेवक कमल आचार्य, त्यां सुधी शुभरात्रि कोहरी आवजो, बाय बाय। साथे खास एक विनंती, स्केमर्स थी दूर रहेजो। खोटा खोटा फोन आवे, टेक्स्ट आवे, कहीं लिंक ऊपर क्लिक नहीं करवानो। हाँ के मोटा भाई बहनों, हाँ समझाई गयो ने। हम तो चतुर छो बधाई, पण छताय आपने सावधान करो छो। शुभरात्रि।